नारी, ओए चंचल बाला, मैं हूँ बालक भोला भाला, ओए पुजारी का पुत्र हूँ मैं पंडित जी का साला, और आप हैं हस्ती आला, और मैं दुश्मना, ओए ना ना ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना

सुनोए नारी, सुनोए देवी। अच्छा चलिए कोई भाई मेरी तरफ से भी, भारत की नारी है आप सबकी सुशील और सुंदर, और नहीं होना है

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।